समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल

0: इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत

0: कर अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीच्या एफ एम सेवेचं हे आहे कोल्हापूर केंद्र। 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम देशवंदना।

0: हमारा तिरंगा सबसे न्यारा,
1: हमारा तिरंगा हमें है प्यारा,
0: तिरंगे की रखो शान,
1: हमारा तिरंगा है भारत माँ का सम्मान,
0: हमारा तिरंगा है भारत माँ का सम्मान।

0: वर्ष हर भारतीय को हार्दिक बधाई। राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत की नई पहचान BSNL देश के साथ, देश की तरक्की के साथ।
1: जर सण समारंभ एन्जॉय करण्याची हवी असेल संधी, तर आणा मस्त मजेची स्फूर्ती बासुंदी।
2: मस्त टेस्टी स्फूर्तीदायी चार प्रकारात, स्फूर्ती सीताफळ बासुंदी, अंजीर बासुंदी, रबडी बासुंदी किंवा स्फूर्ती गुलकंद बासुंदी।
1: स्फूर्ती बासुंदी सर्वांना बनवेल आनंदी, सर्वत्र उपलब्ध।

0: आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी। देश

0: सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चले।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस, नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया के चौथे

0: जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहां से।
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी।

0: यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह। सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिने हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहां के कण कण में, यहां के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहां के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहां पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहां से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहां पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एकटक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व

0: का आज हिस्सा है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हील चेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सोबर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है मां भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम मां भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहां का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। मां भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और

0: श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गार्ड का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास, और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा। माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
1: अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड

0: कमांडर के नेतृत्व में चक्रों का सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान कर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सदैव कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है।
1: अंतर सेना पुलिस सम्मान निरीक्षण कर हजरत।
0: प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का यह बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहां मौजूद उपस्थित

पुलिस जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में, प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में, दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे, एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और

0: से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन ऋतिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है, लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी, तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था, तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी, जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा।

0: गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहां चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहां का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहां उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज

0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम, और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए, बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में, या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए, और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों,

आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है

कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि आप 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा,

इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान

बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट। तीन सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5-7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल यह हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी

एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसको मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से

चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए

कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला

भारत का संविधान है और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है, लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमई को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है, लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ

एकता वो सप्तधारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा,
मॉडर्न हाईवे चाहिए।

इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य

सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए हैं। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, युवाओं को सशक्त किया है।

दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी

संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई देने जा रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक

कदम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विश्वास रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है,

लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है, और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों,
आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद

मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं, सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका एक या दो घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और इस समय
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
2: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो सात अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो सात बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्जवल

0: उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है, और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश

0: दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमा में मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं। और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है, इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह।

0: कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूं। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
3: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
3: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन

0: ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट

0: प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए

0: 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छठा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन क्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और

0: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणीचं हे आहे कोल्हापूर केंद्र, प्रसारित करत आहोत प्रायोजित कार्यक्रम चिंतन हाच चिंतामणी।
2: चिंतन हाच चिंतामणी।

0: कमी वेळात जास्त नफा, बस एका क्लिक वर कमाल हसला।
1: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका। RBI सांगते,
0: जाणकार बना, सतर्क राहा।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन

0: परदेश चित्रपटातलं हे गीत।
1: हरी रामा हरी रामा रामा रामा हरी हरी कृष्णा हरी कृष्णा।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश सलाम कर रहा है श्रोताओं, उन सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। माँ भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए जाने कितनी ही यातनाएं सही, उन्हीं वीरों का गुणगान कर रही है आज चारों दिशाएं। ये स्वर्णिम दिवस हमारे शहीदों और स्वतंत्रता के दीवानों की याद से आज जगमगा रहा है। केसरिया बाने से सजे तिरंगे की शान चौकट को हम निहार रहे हैं और सलाम कर रहे हैं माँ भारती के उन होनहारों को, उन फौजी साथियों को जो आज सरहद पर डटे हैं, और साथ ही हम सलाम करते हैं उन कवियों को जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जो स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और वीरता का जज्बा जगा देती थी, एक ओज भर देती थी कह सकते हैं। ये आजादी के रंग का गुलाल है साथियों, जो आज सबके मुख पर है। यकीन ना हो तो देख लीजिए, इसी गुलाल में सराबोर सुरीला सफर के गीत आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। तो आज की इबारत जो इस खास दिन को लेकर हमने लिखी है, आपकी नजर करते हैं। आज मातृभूमि के श्वेत बादलों में केसरिया बाना पहने विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। सलाम इस जानशीन तिरंगे को, आज हवाओं में बसंती बयार है। ओढ़ कर धानी चुनर, सजा कर आजादी की मेहंदी, जैसे दुल्हन चली गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु का शंखनाद, ऋषियों के कमंडल जल से सिंचित आर्यावर्त हमारा प्यारा वतन हम सबकी शान है। वंदे मातरम की गूंज से आह्लादित चारों दिशाएं वंदन करती हैं उन वीर सपूतों का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लहू आज गुलाल बनकर आसमां पे छाया है, क्योंकि वीर कभी मरते नहीं, वो खुश हैं हमारी मुस्कुराहटों में, जैसे पैगाम देते हों कि आजादी तूफान में कश्ती का सफर है। याद रहे जान तन रहे न रहे, हाथ से तिरंगा न छूटे याद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जी हैं, देश को भी, हमें भी, और हम भी यहां से तमाम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की यादों की अगर बात करें श्रोताओं, तो जिनसे दिल कभी खाली नहीं होता ऐसा कह सकते हैं, आज मौका है, कह दीजिए अपने दिल की बात। तिरंगे की यादों, स्वतंत्रता दिवस की यादों में आपके दिलों में क्या क्या खजाना आज छुपा है ये आप बता दीजिए, और बचपन की बातें भी, स्कूल की बातें भी जरूर बताइएगा, और साथ ही आजादी के जो मायने हैं वो आपके लिए क्या हैं ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, 15 अगस्त वो दिन है जब सदियों की गुलामी के बाद हमारे शहीदों के बलिदान से तिरंगा आजादी की सांस ले पाया था। आज हम खुली हवा में जी रहे हैं, वो किसी की आंखों का सपना और किसी माँ के बेटे की कुर्बानी। आजादी सिर्फ छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है देश को ईमानदारी, एकता और मेहनत से आगे बढ़ाने की। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ मान रखते हैं उन सभी शहीदों का और हर कर्म में जिन्हें हमें जिंदा रखना है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज हमारी हवाओं में जो स्वतंत्रता है वो हमारे वीरों के बलिदान की सुगंध है। जब चारों ओर दिशाओं से वंदे मातरम की गूंज उठती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति उन वीर सपूतों की आरती उतार रही है। वंदे मातरम की तान लिए चारों दिशाएं डोल रही हैं, वीर सपूतों के शौर्य की गाथाएं खुद बोल रही हैं। मातृभूमि की रक्षा जिन्होंने शीश अपने कटाए, आज झुककर शीश वतन उनके वंदन को आए हैं।

हंसराज बहल की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की ये रचना। आपने सुनी सिकंदर आजम फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। श्रोताओ, इस गीत में आपने देखा होगा कि दो कलाकार नजर आते हैं रथ पर। ये कौन से कलाकार हैं आपको बताना है। स्वतंत्रता दिवस की हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी शुभकामनाएं भी

बंकिम चंद्र की ये रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, आनंद मठ फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने पिछले सवाल के जवाब में लिखा है कि प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं रथ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बताया है।

और इस गीत को किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, जो अभी हमने आपको आनंद मठ फिल्म का सुनवाया। और आनंद मठ जो है श्रोताओं, ये एक रचना है, इस बारे में अगर आप हमें बताएं तो क्या ही बात है कि किसने लिखी। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता, एकता और गौरव के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों के बलिदानों से मिली आजादी हम सब के लिए अनमोल वरदान है। एक और श्रोता ने लिखा है सुमधुर सुरीले गीतों और जो आज संदेश हैं वो पढ़े जाएंगे। और एक और श्रोता ने एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि दुल्हन चली पहन चली और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो ये सारे गीत ये लिखा है इन्होंने। एक और श्रोता ने लिखा है कि देश की आजादी के लिए वीर शहीदों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है देश के हित के लिए कार्य और ईमानदारी से हमें करना चाहिए। आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही हम शांति पूर्वक जी सकेंगे। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रेगिस्तान की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात चौकस दृष्टि लिए हुए हमारे वीर जवान चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। उन्हीं के कारण हम सभी भारतवासी सुरक्षित अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। आजादी के लिए हमारे कई जवानों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा इस गीत को इन्होंने याद किया है। और आपको श्रोताओं, जो बचपन की यादें हैं वो हमसे आज साझा करनी है। और साथ ही साथ आज स्वतंत्रता दिवस किस खास अंदाज में आपने मनाया, ये भी आप हमसे जरूर बताएं। ये किस फिल्म का गीत है और संगीतकार कौन है?

फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे इस फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। देश के सम्मान को आंच लगे ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है। देश भक्ति गीत बहुत हैं लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है, माँ है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस जज्बा हौसला मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में है, बसंती दुल्हन विजय विश्व तिरंगा ब्रह्मा वतन पैगाम तूफान जानो तन और तमाम शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएंगी, सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोताओं। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला, और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया। उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ही लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी के जश्न में सबसे अधिक कोई खिलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनु जलेबी जो है वो जगह जगह यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती, इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते, और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती है ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगा। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ढाई महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि

बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। सुबह सुबह इस्त्री किए हुए स्कूल ड्रेस पहनकर हम हाथ में तिरंगा लिए बेहद उत्साह से स्कूल पहुंचते। प्रभात फेरी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने का मजा ही अलग था। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। देशभक्ति गीत, पीटी परेड और अंत में मिलने वाले जो समोसे थे वो बूंदी के लड्डू उस खुशी को दुगना कर देते थे। तो आज आप बताइए कि आज ये जो मिठाइयां हैं वो किस तरह से आप खा रहे हैं और क्या यादें हैं आज खास? क्या आज वापस बूंदी के लड्डू और जलेबियां मिली?

लीडर फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है श्रोताओं, ये आपको बताना है, और किन्हीं तीन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप बताएं, और उनका नाम तो अवश्य बताएं जो 1857 में शहीद हुई और जिन्होंने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये नाम आपको बताने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर बस इतनी सी इच्छा है कि हमारा देश यूं ही प्यारा, भाईचारे और खुशियों से भरा रहे, और छोटे छोटे काम हम अपने देश के लिए करते रहें, थोड़ा और सुंदर इसे बनाएं और कोशिश करते रहें। और सिर्फ सलाम नहीं करना है बल्कि हर दिन अपने हिस्से का प्यार और जिम्मेदारी निभाना है, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक आध कमेंट्स की और गुंजाइश बाकी है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मनोज कुमार वाली फिल्म शहीद मुझे स्कूल में दिखाई गई थी जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, फिल्म का एक दृश्य आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। जागृति फिल्म के बारे में हमारे कुछ एक श्रोताओं ने जो है वो कमेंट किया है कि बहुत अच्छी फिल्म थी।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उपकार फिल्म बचपन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से रोड पर सफेद पर्दा लगाकर दिखाई जाती थी, जिसे सड़क पर बैठकर घर से ही देखा जा सकता था। आज वह सब याद आ रहा है।

उत्सुकता से भरा स्वतंत्रता दिवस का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, तिरंगे को हम एक बार फिर सलाम करते हैं।

रफी के गाए फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं स्वाधीनता दिवस पर। स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें, अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आज़ादी केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का संकल्प भी है। आइए हम अपने आसपास स्वच्छता, सद्भाव, समानता और भाईचारे को बढ़ावा दें, अपने कर्मों से देश को मजबूत बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील भारत का निर्माण करें। देश के प्रति सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देना चाहिए।

बढ़ाना साथी रे। दोस्तों, आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और ये सोचने का दिन भी है कि एक नागरिक के रूप में हम अपने देश को क्या दे रहे हैं। आज़ादी हमें बहुत संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है, इसे सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारा एक छोटा सा अच्छा काम, ईमानदारी से निभाया गया एक कर्तव्य और किसी जरूरतमंद के लिए बढ़ाया गया एक हाथ भी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल देश को सिर्फ शुभकामनाएं ही न दें, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने का संकल्प भी लें। हम अपने देश की विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, अपने आसपास प्रेम और सद्भाव बनाए रखें।

दोस्तों, हमें चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को आज की तारीख की अहमियत समझाएं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करें, उन क्रांतिवीरों के बारे में बताएं जिनकी बदौलत हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हें ये भी बताएं कि आजादी हमें विरासत में मिली कोई साधारण सी बात नहीं है, बल्कि अनगिनत बलिदानों और संघर्षों की कीमत पर हासिल हुई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी केवल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम भर न करे, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान को भी समझे। आइए हम अपने बच्चों को आजादी का इतिहास ही नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी सौंपें, ताकि वे इस देश की स्वतंत्रता, एकता और गरिमा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचा सके। यही हमारा स्वतंत्रता दिवस का सच्चा संकल्प होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: www.jiobi.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहाँ आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूबेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नवमें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: एन दत्ता की तर्ज, राजा महदीली खां के बोल, आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: पगड़ी संभालो

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, शायद ध्यानवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: पद जिंदगी है। सुनकर गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर आशा भोसले का गाया, सज बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं, यही थी आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का, लिखा श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चल्लाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी। संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास, मानसी, शांति, ऋचा, गायत्री।

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड बनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधोरा से बाबूलाल बुराकड़े, गोकुला बुराकड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डब्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और ले।
1: मतलब?
0: मतलब कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: ओ, फ्रेंच। अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुलथुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई, लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप

0: आप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले?
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम बक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
1: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर?
2: कौन है बाहर? ए, कौन है वहां? अरे कौन है बरामदे गए? मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
3: अरे हम हैं बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
2: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
3: चलो हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं।
2: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहां से।
3: हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए।
2: मैं कहता हूं अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
1: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
0: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
1: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाए।
2: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ू क्या?
3: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
2: बताओ भला, हाँ गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो।
1: लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम, ये क्या बजाने लगे तुम?
0: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
1: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
0: शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहां के आदिवासी

0: भाई गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्ड में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: साहब, साहब, साहब,
0: मर गए।
2: साहब, क्या बात है बहादुर? साहब,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर?
2: साहब,
0: क्या क्या हुआ, क्या बहादुर?
2: साहब,
0: अरे भाई बहादुर इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
2: साहब, साहब, साहब, वो
0: क्या, क्या, क्या, वहाँ वहाँ कहाँ?
2: साहब, साहब, साहब, साहब, वहाँ।
0: अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
2: साहब, साहब,
0: वहाँ कहाँ बहादुर?
2: अरे साहब, साहब, वहाँ कोयला खान में साहब।
0: कोयला खान में क्या हुआ? कोयला खान में
2: साहब, कोयला खान में हाँ। अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
0: अरे आ गया,
2: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
2: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम।
2: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आ रहे साहब,
0: चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा हूँ।
2: जल्दी आ रहे साहब, जल्दी आ रहे साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
0: नहीं नहीं रहने दो, मैं चलता हूं। इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर कैसे हुआ ये सब?
3: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
0: अच्छा ये बताओ कुल कितने लोग फंसे?
3: अरे साहब होंगे करीब 35।
0: 35
3: साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
0: अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
3: जी साहब वो शंकर गया है।
4: अरे निगम साहब कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खदान में पानी भर चुका है।

0: निकालेंगे उन्हें बाहर।
1: देखिए देखिए देखिए, मैं
0: इतनी बार आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुनो
1: भाई, देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी है,
0: हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या
1: है। अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
0: अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते हैं?
1: भाई देखिए देखिए, मेरी एक बात
0: सुनिए। देखिए क्या देखे, तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
1: देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ
0: मनोहर, हम तो खुद कर लेंगे।
2: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है, चालू हालत में है कि नहीं?
3: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
2: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
3: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
2: क्या करूँ? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
3: होंगे यही करीब करीब 450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
4: नमस्ते साहब।
2: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
4: जी, जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
2: मैं बात कर लूं?
4: जी।
2: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
4: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
2: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ, मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
0: ऊपर तक जानी चाहिए।
2: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
5: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
1: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
6: कब हुआ ये
1: सर? करीब आधा घंटा पहले।
2: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल का घेराव करने वाले हैं।
6: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर गए?
2: मर गए सर? मतलब
6: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
2: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
6: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
2: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो।
6: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो, बस कोई मरे नहीं। यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी निगम।
1: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो,
2: नो, फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
1: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
2: आने की सोच रहे हैं अभी। जनरेटर वगैरह मिला?
4: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
2: What?
4: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
2: ओह अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
4: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो। मनोहर भी गया है उसे लेने।
2: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
4: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
2: पुलिस?
4: जी।
2: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
4: हाँ चलिए।
7: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
1: देखिए देखिए आप लोग जरा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं।
2: हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। औने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। ये बारिश है कि

0: कुत्ते का नाम ही नहीं ले रही है।
1: वो देखिए साहब, मनोहर वगैरह आ गए।
2: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
3: अरे साहब, वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है,
2: उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया साहब।
0: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
2: ताला तोड़ दे?
0: हाँ हाँ भाई, तोड़ दो उसे।
2: अरे मगर साहब, गोदाम की बाकी माल की गारंटी?
3: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब, हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब। आप
0: भाई, अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
3: साहब चले चलिए।
0: अच्छा ठीक है, हाँ चलो, चलता हूँ मैं।
4: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
0: सुनो
4: जी,
0: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
5: हाँ साहब है।
4: साहब, ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
0: हाँ साहब। अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं?
4: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
0: क्या, सात बच्चे?
4: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिल है ना साहब, भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
5: अच्छा
4: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त, ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार, लगाओ तो चोट फिर।
5: हाँ। लीजिए साहब, टूट गया।
0: अच्छा चलो, जल्दी से फाटक तो खोलो।
5: हाँ सर।
1: अरे यहां तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहां तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
4: हाँ कुछ।
1: अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
4: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद शायद इस अलमारी में।
1: हाँ ढूंढो। मिल गई, मिल गई टॉर्च, मिल गई।
4: अच्छा साहब, टॉर्च मिल गई।
0: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ
5: जी। अच्छा।
0: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
5: जी,
0: अभी देखो अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें।
1: जी अच्छा, जी अच्छा। अरे ओ बाबू
0: हर्षों, जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
1: अब बैठो भैया,
0: लगाओ।
6: आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो, लगाओ तो। ये तो घूमता ही नहीं है। शंकर
1: हाँ।
0: अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूं कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश। अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे
5: साहब? लगता है चीफ साहब आ गए।
0: अरे साहब, लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं।
5: अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतार हो जाएंगे। अरे मनोहर, अरे जल्दी जल्दी पाई बिछाओ।
0: चीफ तो आए नहीं लगते।
5: हाँ सर, वो तो नहीं आए। तो क्या सर, चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
0: नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर और तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
5: जी अच्छा।
0: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
5: जी समझिए।
0: मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ। और सुनो, कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
3: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
0: शंकर शंकर, पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
5: ये लीजिए सर,
0: पाइप छोटा ना पड़ जाए। सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
6: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
0: 400 फुट?
6: पाइप 600 फुट लंबा है।
0: अच्छा
6: छोटा
0: अच्छा।
6: नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
7: अरे निगम साहब, इन लोगों की जान चली जाएगी।
0: अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
6: शाबाश
0: शाबाश मनोहर, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
3: जी साहब, जी साहब। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
0: वेरी गुड वेरी गुड, चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
1: अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे

0: अरे ये पत्थर कौन देख रहा है? अरे कौन? अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
1: अरे पागल हो गए आप क्या?
2: जाने कौन भड़का रहा है ना।
3: भारी पत्थर है
1: साहब।
3: भैया क्या कर रहे हैं तुम लोग?
1: साहब मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
2: वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
1: नहीं साहब, नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाए बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था।
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है।
0: हाँ हाँ डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये हैं शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया।
4: मगर ध्यान रहे
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी जी,
4: आइए
0: जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब।
3: मैं शंकर साहब। शंकर। हाँ साहब।
5: शंकर
3: कहाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर।
3: हाँ साहब।
5: कहाँ।
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है।
0: जी बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ निगम, निगम ये क्या हो गया है तुम्हें। हाँ निगम, निगम तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर तुम समझते नहीं हो। शेखर बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। Really, I'm very sorry.
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं।

0: आठ
1: प्लस इंजेक्शन डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब कुछ कीजिए मेरे साहब को बचा लीजिए डॉक्टर साहब मेरे साहब को बचा लीजिए डॉक्टर साहब मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है। आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
3: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
2: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
3: बिल्कुल।
2: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम

0: देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाया, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं, या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है, ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
1: बोमन ईरानी,
0: बोमन ईरानी को,
1: डैनी डैंजोंगपा
0: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
1: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
0: बहुत प्यारी फिल्म,
1: बहुत प्यारी फिल्म,
0: बहुत प्यारी फिल्म,
1: नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे, एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
0: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है,
1: बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
0: वो सूरज जी उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। केटिको का मतलब होता है लड़की,
0: अच्छा
1: हाँ, नेपाली
0: नेपाली शब्द
1: लड़की
0: जी,
1: जी। तो फिर वो गाना की और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
0: वही।
1: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो इतने ग्रेसफुल डांसर साबित कर चुके अपने आप को, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है।
0: अच्छा,
1: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
0: हाँ।
1: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया।
0: हाँ, इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
1: इम्प्रोवाइजेशन, अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन दिग्गज कलाकारों को।
0: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
1: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन, डैनी डैंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ, अनुपम खेर जी, केटिको
0: केटिको, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें भी उस मजे को, उस मजे वाली जिंदगी को जीना है।
1: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले जाऊंगी।
0: जी जी, चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटिको, और केटिको का मतलब होता है लड़की,
1: बिल्कुल पहाड़ी लड़की,
0: बहुत बढ़िया। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो

0: कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई,
1: गुड्डी बड़ी हो गई।
0: तो मैंने कहा याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो।
1: हाँ एक गाना सुना हुआ है जी,
0: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है मास्टर जी। अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे
1: गुड्डी से मास्टर जी।
0: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर, अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? अच्छा जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ, जब मैं लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
1: पूरा लड़का बन जाती,
0: पूरा लड़का बन जाती हूँ। मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे मैं सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ गया, तुमने इतना बढ़िया किया मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा
1: जी।
0: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
1: ये बड़प्पन है,
0: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे, सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया
1: जी।
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
1: नहीं,
0: दिन
1: वो परंपरा है
0: हाँ
1: गुरु को गुरु बनाने
0: हाँ
1: की
0: और वो
1: जी।
0: मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा
1: अच्छा
0: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहां तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात।
0: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
1: वो
0: होती है।
1: चीज
0: मैं
1: आपकी
0: ये
1: आंखों में अभी भी दिख रही
0: हाँ
1: है
0: कि
1: जी।
0: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी।
1: हाँ उनका तो जानना है
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो
1: बिल्कुल
0: इतने कमाल के एक्टर है
1: जी,
0: और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में,
1: में।
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सेट मैं अमित जी का कर रही हूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुआ, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है, और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे और पूरा सेट। उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं,
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं रहते
0: वहीं रहते थे, मतलब कि
1: थे
0: 500 लोग
1: मजा
0: वहीं खड़े हैं,
1: आता
0: 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं
1: जी।
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है और हर बात पे वो हंस भी रहे हैं, वो ताली भी बजा रहे हैं। और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो एक अलग माहौल था उस सेट
1: जी
0: पे।
1: जी जी
0: और उसके बाद डेनी सर,
1: हाँ उनका भी जानना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने करना है मेरे साथ।
1: हाँ
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते
1: करते थे
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी
0: और
1: करते थे।
0: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था। और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी
1: हाँ
0: दिखाते और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं जी
0: करके दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी
0: बहुत
1: हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बजातिया जी है,
1: सॉफ्टली
0: बहुत
1: बोलने
0: ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी
0: वो जब आते इन सबको देखते करते हुए और वो मुझे ऐसे गले लगाते, बहुत असर पे हाथ रखते हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं, कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने

0: वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है। वो जो बचपन
1: ना,
0: बहुत मजा।
1: जी
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा
1: होता,
0: नहीं होता कभी।
1: हाँ।
0: वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ, उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था, हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं
0: तो
1: तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों नहीं
1: कर ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते।
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में। आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहां से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल समझ
1: किस विषय पे बात कर रही हूं। तो मैं चाहती हूं वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूं
1: जी,
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूं। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ।
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
1: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा,
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का।
1: जी
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
1: ओके।
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था।
1: हाँ।
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को इतना समझते भी नहीं थे।
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
1: जी,
0: रहे थे
1: जी।
0: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
1: हम पैसे के लिए गए थे,
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
1: हाँ।
0: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं गणेश हेगड़े साहब,
1: कोई दिक्कत नहीं,
0: कोई
1: है,
0: दिक्कत
1: रिस्क
0: नहीं है,
1: नहीं
0: मम्मी
1: है।
0: ने कहा बेटा चलो करते
1: हाँ,
0: हैं, देख लो क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
1: बहुत
0: मेरी
1: प्यारी
0: पहली
1: फिल्म है, बहुत
0: बहुत
1: प्यारे
0: प्यारी
1: गाने
0: फिल्म।
1: हैं जी।
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो
1: ये
0: वो मेरे
1: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी।
1: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है, वो भी बड़े यंग ही थे
1: हाँ,
0: बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी। मेरे लिए उस वक्त कुछ भी सब कुछ नया था,
1: हाँ,
0: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था,
1: वही सीख रहे थे वही कर रहे थे।
0: तो वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है। संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
1: हाँ,
0: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट
1: बड़ी
0: काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
1: जी।
0: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
1: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
0: हाँ, और
1: बहुत
0: वो
1: ज्यादा गैप
0: समझते थे
1: नहीं
0: कि
1: था।
0: वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
1: जी
0: वो उनकी
1: बिल्कुल
0: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
1: जी।
0: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
1: तो
0: मतलब
1: बताने तो जाना
0: खामोशी के
1: पड़ेगा।
0: बाद मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी

0: मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम के, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है, उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल, तो तू सिखा, सनी देओली बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ गया, तो वो सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली दबंग मस्त मस्त दो नैन गाने किया था वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय हो क्या करो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया, सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक रैपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी जो प्रेम रतन धन पायो
1: जी बिल्कुल,
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने
1: जी,
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे बहुत ज्यादा, राम गोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं, तो ये चलता रहा, फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के सर देखिए मैंने ये काम किया,
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजना
0: अब
1: पड़ी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ, ये पहली बार हुआ था सलमान में बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट, वो हिट वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था,
0: ऑरा क्रिएट हो गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा,
1: कई लोग रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी
1: बनाते
0: पे रील बनी, दब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई
1: जी,
0: मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे, फिर दबंग हुड़हुड़ दबंग जब आया उन्होंने जो
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के,
0: वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था
1: जी जी,
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना,
1: अच्छा
0: कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह,
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर,
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है, तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं, और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: ही नोज
1: उबत है, काबिलियत है,
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया, राधे में उन्होंने गाना
1: जी,
0: दिया
1: जी,
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान खान का,
1: हाँ वो बहुत खूबसूरत,
0: वो गाना मुझे दिया बुला के, तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आप के लिए आसानियां हो जाती है
1: जी,
0: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर,
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से,
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है
1: जी।

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना जो अपना एक कहा जाता ना एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे यानी एक स्थान पे एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, हाँ, जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बढ़ जाती
0: है, तो एक विवाह के पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसे ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे या 27।

0: 28 साल के होंगे, तो
1: जी
0: ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
1: बहुत पुराने समय की बात है,
0: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
1: खुशबू उसी समय की है,
0: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
1: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था।
0: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
1: उम्र का भी अंतर है,
0: उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते अलग करते अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूं मेरी स्टेप, यहां पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए। अच्छा जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का, गड्डी लेके वही स्टेप रखेंगे, उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल शर्मा जी के बेटे, उनको मैंने अलग स्टेप दिया। मैंने कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला, क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना, और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे जो सबसे बड़े हिट हुए, एक गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत पसंद किया यूथ ने,
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है, तो हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है ना
1: बहुत खूबसूरत सेट था, वो
0: चिलमन बनवा के चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है, और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है, तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं गाना, इतना खूबसूरत। और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था, तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूं फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप कदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी,
1: बिना मेहनत के
0: हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते पीछे।
1: यानी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर 2 सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिया, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज
1: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर हैं, कोहिनूर है, आपने काम करवा लिया। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है 70-60 से लेके 80-90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है,
0: बिल्कुल।
1: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता
0: बिल्कुल
1: है उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है,
0: मेरा पहला हीरो। मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं हीरो तो राजपाल यादव ही थे
1: जी,
0: तो मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है
1: जी,
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को,
1: रुलाना आसान है,
0: हंसाना बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको एक मिनट के अंदर, और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर

0: कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मैंने उनके दो तीन गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है और वो बराबर टाइमिंग पे डांस करते हैं।
1: क्या बात है,
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया?
0: काफी काम किया
1: है ना, साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया। तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत की काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2012-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
1: जी,
0: तमन्ना, कार्तिक, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
0: उसके
1: आते हैं।
0: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके, एक्टर शुड टच द सेट,
1: मतलब
0: 7.
1: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले हैं, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप, बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूं, क्यों? ही सेड, अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7.
1: 7 मीन 7
0: पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया, नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
1: हाँ।
0: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं
1: क्योंकि वो इतना क्विक है।
0: एब्सोल्युटली,
1: हाँ। तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल तेरे इश्क में खो जाते हैं।
1: क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शबीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी। मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी,
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है, क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक कदम चली मैं थी, बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें,
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: एग्जैक्टली, हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो नहीं, ये हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे, उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस जनरेशन।
0: एक बार ऐसा होता था, पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है,
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है। हमारी टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी, आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचरें हमारी पहली बात
0: टीचर
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर, हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था। तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मैं स्पीच रेडी करके गई, नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पर, मैंने अपने भाई को फोन किया है, सर बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके जाना,
1: बट लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो
0: जी।
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ। उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन, उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले,
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ, काफी कुछ काफी कुछ, अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड।

0: अवार्ड्स हो चुके हैं,
1: जी
0: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते, लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दासा फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के गाने भी अवार्ड में थे
1: जी।
0: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
1: क्या बात,
0: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल।
1: हम सबकी प्रार्थना है कि आपके हाथ में नेशनल अवार्ड आना चाहिए, जिसने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
0: बिल्कुल,
1: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
0: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
1: जी,
0: पहली बात अपने आप में बहुत
1: जी।
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से, जब हम दोनों नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को देख रहा है, एक लेवल अलग है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी।
0: उसकी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, उससे एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था, अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा जो मेरे गुरु रह चुके हैं, सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म
1: किससे करवा दें,
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है
1: जी,
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ।
0: मुझे मिले ही ना मिले ही ना, और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए, और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म, यू शो इट टू प्रभु देवा, यू शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके,
0: लड़कों ने बोला मैम देयर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में
1: प्रभु देवा के सामने डांस,
0: प्रभु देवा के सामने जब वो आए बोले यू विल डू इट, व्हाई व्हाई व्हाई यू, सर एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ प्रभु सर, वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना, तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ लड़का हूँ कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है।
1: हाँ।
0: सेट पे।
1: हाँ।
0: सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा हुआ है,
1: तो आए गए
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया।
1: हाँ।
0: पूरा गांव शूट कर रहा था एंड दे ऑल क्लैप्ड एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी, मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट, नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन दूसरा दिन तीसरे दिन चौथे दिन
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज़ को,
0: देख रहे मुझे देख रहे। अब मैं रोजों में थी उस वक्त, रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो ऐसे कुछ होगा, और मैं बोली अरे अरे रुको रुको मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे सर नहीं मैम वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना।
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए,
1: अगर शबीना बन गई दबंगिनी
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो
1: जी।
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ

0: इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ
0: मेरी पोस्ट देखते हैं और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगनी शबीना खान, दबंगनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आपको नहीं पता जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है।
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में
1: जी
0: और नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: सो बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं। ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा,
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज

0: इसलिए कराता है कि यार ये सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी
1: हाँ
0: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
1: पूछो तो।
0: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा, मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
1: कैशव और पूरा जवानी सब यहीं निकली,
0: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सबर का दामन थामे रखो, हमेशा पेशेंस जिसे कहते हैं, सबर रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है। ये सारे चीजें यही कहती है कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात बरते,
0: थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ बट रास्ते तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चेन अप प्रिंसेस, कीप योर चेन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता, आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो, वो रखो। और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही होती, और आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है शमीरा जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको ऊपर रखो और उनको बचा के रखो,
0: बहुत जरूरी।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब, और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं, यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है। यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल मेरा गुस्ताख हुआ जाता है, बगावत करने को बेताब हुआ जाता है, वो न सर झुकाना चाहता है न नजरें, बस वही करना चाहता है जो उसका जी करे। अब इस गुस्ताख दिल के बेपरवाह अंदाजे बयां का रंग देखिए जनाब, ये नजरों से नजर को लड़ाना चाहता है।

आ बैठे हैं उनकी महफिल में जिनके नाम से होती है सुबह और शाम। जुबां की खामोशियों का क्या कहिए, लेती हैं अब नजरें भी बस उनका ही नाम। दुनिया की रस्मों रिवाज को भुला बैठे हैं सरेआम, कर दिया है अब ये ऐलान कि उसकी महफिल में आज बैठेंगे हम अपने।

की महफिल में आ ही गए तो अब क्या सोचना कि क्या होगा अंजाम। दिल से दिल की पाती थामी, नजरों से दिया दिल का पैगाम। कभी इनकार करते हैं कभी इकरार करते हैं, इसी कारस्तानी में किया दिल को भी बदनाम। परवाह किसे इस जमाने की, गर्मों करें अपनी नजरें इस नजर के नाम।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। नजरों की नजरों से हुई बात, खिलने लगे तारे, मुस्कुराने लगी ये रात, रोशन हुई हमारे दिल की उम्मीदें, चमकने लगी है कायनात। जानते थे हम होगा यही जब मिलेंगे हमारे जज्बात।

शर्म हया के पर्दे इन निगाहों में आने लगे हैं, वो देखकर हमको पलकें झुकाने लगे हैं। कहां तो बातें हो रही थी कि करेंगे निगाहें चार, और अब उठती ही नहीं पलकें करने को दीदार।

से बचने की बातें तो जमाने ने सिखाई हैं, उसी जमाने ने इश्क की कीमत भी समझाई है। क्या जाने किस मोड़ पर इस दिल के कदमों से उस दिल की आहट आई है। इश्क है तो जिंदगी है, ये जिंदगी इश्क की परछाई है।

छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अपनी दोस्त निहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: आकाशवाणी जळगाव केंद्र निर्मित युवकांसाठी कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला. 6 वाजता थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून हिंदी आणि इंग्रजीतून बातम्या सहक्षेपित केल्या जातील.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ. श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है.
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा. आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया. इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है.
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया. महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक 8 होम समारोह का आयोजन किया. विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया. लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है. बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं. दूरसंचार विभाग पुणे में 17

0: वसंतराव देशपांडे आणि सहकलाकारांनी गायलेलं अत्तराचा फाया या चित्रपटातलं गीत आपण ऐकत होता. आणि ह्या गीताबरोबरच चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीतबहार समाप्त होत आहे. 6:20 होत आहे. थोड्याच वेळात संस्कृत प्रथम बातम्या दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करत आहोत.
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा. आदौ मुख्य वार्ताः. कृत्स्ने हि देशे अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणम्. रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमन्त्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणम्. रक्तदुर्गे पप्रथमतया जातं वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतस्य सस्वर गानम्. प्रधानमन्त्रिणा निर्धनमध्यमवर्गीय कुटुम्बानां कृते निःशुल्क प्रातिभासिक प्रशिक्षणस्य अथ च आगामिवर्षे कोट्यधिक युवभ्यः AI कौशलप्रदानस्य कृता उद्घोषणा. भारतं बहुभिः देशैस्सह सन्धिं विधाय महत्वपूर्ण खनिजक्षेत्रे विश्वासयुक्त वैश्विक सहयोगित्वेन समुदेतीति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्. संसाधनानां अस्त्रीकरणे प्रधानमन्त्रिणा प्रकटिता चिन्ता समाह्वानानां निवारणे भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः सामर्थ्यम् अमुना प्रशंसितम्. अपि च इण्डोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स् इति तटस्य समीपे 17.7° भूकम्पेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. देशः अद्य स्वकीयम् अशीतितमं स्वतंत्रता दिवसं समाचरति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिकस्थलात् लालकिला इति रक्तदुर्गात् स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य नेतृत्वम् अकरोत्. तस्य आगमनावसरे प्रथमवारं लालकिला इत्यत्र वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतं प्रस्तुतम्. राष्ट्रध्वजारोहणावसरे 21 आग्नेयास्त्रध्वनिभिः अभिनन्दनम् अभवत् भारतीय वायुसेनायाः द्वाभ्याम् MI-17 उदग्रयानाभ्याम् पुष्पवृष्टिश्च सञ्जाता. अस्य वर्षस्य एषः समारोहः युवशक्त्यै समर्पितः, यच्च 47.2 वर्षं यावत् विकसितभारतस्य निर्माणे तरुणभारतस्य योगदानम् आमानयति. रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी रक्तदुर्गे वन्दे मातरमित्यस्य गानम् ऐतिहासिकः क्षणः इत्यवर्णयत्. सः अवदत् यत् राष्ट्रं महता उत्साहेन नवसंकल्पैः च अग्रे सरति.
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है. पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए. उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं. पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं.
1: प्रधानमंत्री मोदी न्यगादीत यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वकीयेन दृढसंकल्पेन समर्पणेन च राष्ट्रम् उन्नतशिखरे प्रापयितुं सर्वविधप्रयासान् कृतवन्तः. विविधेषु क्षेत्रेषु प्राप्ताः उपलब्धयः प्रकाशयन् सः अवदत् यत् 12 वर्षेषु रक्षोत्पादने प्रायः 4 गुणिता, खादी ग्रामोद्योग उत्पादने 5 गुणिता, इलेक्ट्रॉनिक निर्माणक्षेत्रे 7 गुणिता, आधुनिक रेल निर्माणक्षेत्रे 21 गुणिता अथ च संचार दूरभाष निर्माणक्षेत्रे 33 गुणिता वृद्धिः सञ्जाता. सः असूचयत् यत् अन्तर्जाल उपयोक्तॄणां संख्यायां 4 गुणिता अथ च अंकीय वित्तीय विनिमयेषु च 100 गुणिता वृद्धिः अभवत्.
2: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए. हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए.

0: हर साल चार गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल तीन गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां कृते विविध सार्वजनिक परीक्षाभ्यः निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षणस्य घोषणम् अकारी। सः अवदत् यत् शीर्ष अध्यापकानां निर्देशने उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षां सर्वसुलभां विधातुम् एतत् एकं क्रान्तिकारी पदक्षेपमस्ति, येन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां सहस्रकोटि रूप्यकाणां रक्षणं भविष्यति।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि एकस्मिन् वर्षे एककोटि युवभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशले प्रशिक्षणं प्रदास्यते, येन ते वैश्विक एआई क्षेत्रे नेतृत्वं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। सः अवदत् यत् भारतेन व्ययः गुणवत्ता कौशलं चेत्येतेषु त्रिषु मुख्यस्तम्भेषु विशेषावधानं प्रदातव्यम्।
0: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण खनिजेषु सर्वकारस्य विशेषावधानं प्रकाशयन् अवदत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिकी पूर्णतया महत्वपूर्ण खनिजानामुपरि आश्रिता विद्यते, भारतं च अस्मिन् क्षेत्रे स्वस्थानं सुरक्षितं सक्रियतया कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विश्वस्मिन् प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीय हितानां रक्षणाय प्रयतते, किन्तु दौर्भाग्येन अस्मिन् संकटकाले कैश्चिद्भिः देशैः स्वप्रभुत्व प्रदर्शनार्थं संसाधनानां अस्त्रीकरणस्य कुत्सितं षड्यंत्रं कृतम्।
0: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर, और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः दलेभ्यः सविनयं निवेदितवान् यत् ते संसदि राज्य विधानसभासु च राजनैतिक कलहं परित्यज्य महिला आरक्षणस्य क्रियान्वयनाय सहयोगं कुर्युः।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य अशीतितमे स्वातंत्र्य दिने राष्ट्रीय युद्ध स्मारके वीरान श्रद्धांजलिम अददात्। राष्ट्रपति स्मारके पुष्पमालां समर्पयित्वा हुतात्म वीरान श्रद्धांजलिम अर्पितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, रक्षा सचिवः संजय सेठः, रक्षा सचिवः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यम, सेना प्रमुखः जनरल धीरज सेठः, नौसेनाध्यक्षः एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः, रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः च अस्मिन् अवसरे अत्र उपस्थिताः आसन्। इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 तीव्रता

0: अरे सुन तो।
1: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
0: किसको?
1: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
0: अच्छा ये बात है?
1: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
0: अब तो झट से बात हो जाती है।
1: ऐसा क्या?
2: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
0: हाँ,
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
4: मंडळी किसानवाणी या कार्यक्रमांतर्गत आता कृषी संवाद मध्ये स्वच्छ दूध निर्मिती याविषयी डॉक्टर पुष्पनाथ चौगले यांची सायली चौधरी यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकूया। आज या मुलाखतीचा तिसरा आणि शेवटचा भाग।
5: सर, काही दूध उत्पादक अँटीबायोटिक्सचा वापर करतात, त्याचबरोबर गोठ्याची स्वच्छता करत असताना कीटकनाशकांचा वापर केला जातो, तर त्याचा

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: मंडळी, कार्यक्रमात आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची, पण त्यापूर्वी जाणून घेऊया आमच्या उद्याच्या कृषी विषयक कार्यक्रमांविषयी।
6: उद्या सकाळी कृषी वार्ता या कार्यक्रमामध्ये झेंडू लागवड याविषयी माहिती,
5: आणि उद्या संध्याकाळी 7:30 वाजता शेतकरी बांधवांनी पत्र लिहून आवड कळवलेल्या गीतांचा साप्ताहिक कार्यक्रम शेतकऱ्यांची आवड आपण ऐकू शकाल। तर मंडळी, आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्रावरच्या कृषी विषयक कार्यक्रमांचा जरूर लाभ घ्या।
6: पण आता मात्र कार्यक्रमात या टप्प्यावर आम्हाला इथंच निरोप द्या। पुन्हा आपण भेटणार आहोत उद्या संध्याकाळी 7:30 वाजता माझं शेत माझा शिवार या कार्यक्रमात। तोपर्यंत अंजर मुजावरचा
5: आणि सायली चौधरीचा नमस्कार।

कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री

मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे।

0: सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया।
1: इस सप्ताह संसद में या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आता आपण ऐकलत। यानंतर थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारी बातमीपत्र आणि स्पॉटलाइट हा कार्यक्रम आम्ही सहक्षेपित करत आहोत।
2: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए

0: बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही

0: की गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लात्विया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूज़ www.newsonair.gov.in और

0: हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights.

0: मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: In this journey of independence, countless brave men and women made the supreme sacrifice. Paying tribute to their sacrifice and dedication, the Prime Minister called upon the people to build the India they had dreamed of.
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Amid the celebrations of Independence Day, the Prime Minister also spoke about parts of the country currently facing the challenge of floods. Expressing concern for the affected people, he assured them of all possible assistance.
0: बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: But India's aspiration do not end here. The Prime Minister made it clear that the country will no longer limit itself to small dreams. The goals will be bigger and the resolve to achieve them will be even stronger.
0: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: A strong economy is essential to turn these big dreams into reality. Highlighting India's rapid economic growth and changing economic landscape, the Prime Minister spoke about the country's growing capabilities.
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: Modern infrastructure is giving further strength to this pace of development. Speaking about the expansion of roads, railways, air connectivity and digital connectivity of the past decade, the Prime Minister said,
0: "हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है।
1: India is also reaching new heights in the field of technology. In this context, the Prime Minister mentioned the country's first hydrogen-powered train and expressed confidence in India's technological capabilities.
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: From technological strength to a growing global identity, the message is clear. India must move forward in the world with confidence in its own strength, capabilities and national pride.
0: आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर सरकार है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
1: The Prime Minister also underlined the importance of equal participation of women in the journey towards a developed India. Referring to efforts related to women's reservation, he appealed to political parties to work together and move forward.
0: समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: And who is at the center of this entire development journey? The citizen. With the message of Nagrik Devo Bhava, the Prime Minister called for putting citizens at the heart of national development. Let us listen to his words.
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
1: Finally, the Prime Minister drew attention to the opportunities and possibilities before the country and said that India has the time, the opportunity and the capability to move forward. Now is India's time.
0: मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है।

0: ही निर्मिती आकाशवाणी मुंबई केंद्राची. ऐकूया संगीताचा अखिल भारतीय कार्यक्रम.
1: ये आकाशवाणी है. आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है. आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री जुनैन खान का सितार वादन. मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे जुनैन खान का बचपन मुंबई में बीता. मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार की शिक्षा प्रारंभ की. उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने अपने अभिनव जाफर खानी बास के माध्यम से सितार की रचना, वादन शैली, तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान की. जाफर खानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है. इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें एक साथ 2 और कभी-कभी 3 तारों का प्रयोग किया जाता है. इसमें बाएं हाथ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है. श्री जुनैन खान हलीम अकादमी ऑफ सितार के कार्यकारी निदेशक हैं. यह भारत की पहली सितार अकादमी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में उनके पिता उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी. श्री जुनैन खान जाफर खानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं. श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है. तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह, जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है. फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैग स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है. श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं. अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है. आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं. वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया. वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है. आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन. आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी 3 ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान.
2: दिस इज आकाशवाणी. वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक. Tonight we present sitar recital by renowned sitarist Shri Zunain Khan. Born in Bhopal, Madhya Pradesh, Zunain Khan grew up in Mumbai. He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father, Ustad Abdul Halim Jafar Khan, who transformed sitar composition, playing style, technique and pedagogy as well as capabilities of the instrument through his innovation of the Jafar Khani Baz. Jafar Khani Baz style has been described as a rare, highly sophisticated tradition of sitar playing rooted in rhythmatic innovation and tonal depth. Zunain Khan explains the technique as involving the simultaneous use of 2 or sometimes 3 strings. The left hand is called upon to do much more work, resulting in a better synchronization between the 2 hands. Zunain Khan is the executive director of Halim Academy of Sitar, the first sitar academy in India.

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग रागेश्री by श्री जुनैन खान। He continues his sitar recital with राग किरवानी। द्रुतगत set to तीन ताल।

0: आप सुन रहे थे राग केरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं, दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू कीरवाणी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दैट वॉज धुन इन राग देश एंड दैट कंक्लूड्स द सितार रिसाइटल बाय श्री जुनैन खान। In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: Sangeetacha Akhila Bharatiya Karyakram ya antargat Junain Khan yancha sitar vadan apan aikat hotat. Tyanna tabla sath keli hoti Anish Pradhan yani. प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआर ऍप सहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून हा कार्यक्रम आपण ऐकत होतात। रात्रीचे 11:41 होत आहेत। आता आकाशवाणी महाराष्ट्राच्या मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीचे कार्यक्रम समाप्त होत आहेत। दरम्यान आकाशवाणी महाराष्ट्राच्या मुंबई केंद्राचे कार्यक्रम एआर मराठी डीटीएच उपग्रह वाहिनीवरून आपण ऐकू शकता। तेव्हा आता निरोप घेऊया, पुन्हा भेटूया उद्या पहाटे 5:50। तोपर्यंत नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद।